जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये रात के दिए बुझते नहीं और दिल में अगन लग जाती है।